तिम रो लुके काम भावना मन मैन लुकाई राख ऊर्जा रोके रोकिन बाहरी न देऊ